साईं जा तो भावै सोई थिसी जो तू दे सोई हों पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनू कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मनमुख गवाया तुद आप भी छोड़िया आप मिलाया तू दरियाओ सब तुझ ही माहे

आबहादराख मोहे मन क्रम बचन विचार चापई मैना अग्निशय प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान न तिनसाऊ लिबलागी मोरी पग इनसाऊ महाकाल रखवार हमारो महालो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाह गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रत परिया

ऐस प्रभु को भयो, जन्म धरा जग आए। अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कैद सुनाए, कब बाज दोहरा ठाठ पयो मैं जोर कर, बचन कहाँ सिर न आए। पंथ चला तब जगत में जब तुम करो सहाय, दोहरा जे जे तुमरे ध्यान कहो, नित उठते हैं संत अंत लहेंगे मुक्त फल, पामे के भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो कोटक बिशन महेश, कोट इंद्र ब्रह्मा किते राव सज गुरु रजलेश, दोहरा राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई भागत नेत, स्वर्गवास रघुबर कर सगरी पुरी समेत चापई।

मुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कार्ज सब सवारना, सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाही कर तेरा, करता तेरा सब किश है जिस देहे सो पावे, सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द कनेरे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही कर तेरा, साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया कर सांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु बिटहो, जिस दिया ए वडियाइया कह नानक सुनो संतो शबत रो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभाग, घर सभाग शब्द वाजे कला जित कर धारिया, पंच दूत दवास किते काल कंट कुमारिया, तुर गर्म पाया तुद जिन काओ से नाम हर के लागे, कह नानक तसक होवा तिदगर अनहद वाजे, अनद सुनो बट भागी हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे पूरे गुरते जानी, सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहे परपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे, मुंदावणी महला पंजवां थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत्संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब आधारो जे को खावे जे को पुंचा तिसका हुए उदारो।

अर्थ इतड़े गुरु अमरदास डिठे मिले है। सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए, से जंत पए हरियावले जिन्हें मेरा सतगुर देखिया जाए। धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए। धन धन गुरु जिन नाम आराध्या आप तरिया जिन्नी डिठा तिन्ना लए छड़ाए।

इतनी सेवा प्रवान करने जी कीर्तन कर दिया भुला दे माफी बख्शे आप सब न तीसरे पातशाह तन तन साहब श्री गुरु अमरदास महाराज जी दे प्रकाश घर दे लख लख बधाइया होना भाई साहब भाई अगत सिंह जी आप जी नू इस संबंध कथा राय जोड़नगे उन्होंने पासों प्यार का सरन करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

परम सम्मान योग जुगो जुग अटल चवर शतर तकत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो तंता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ जो सामदे दीवाना विच सतगुरां दी पावन बाणी दी लड़ीवार विचार चल रही है वो विचार आपा सांझी कर सकीए कुछ समय वास्ते। अज तीजे पातशाह जी धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी उन्हां दा इतिहास भी सांझा करन दा जतन करांगे क्योंकि अज तीजे पातशाह धन धन गुरु अमरदास साहिब सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। आओ विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पावन शब्द की आपा विचार कर रहे हाँ वो पावन शब्द पहले पातशाह धन धन गुरु नानक देव साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन

पनड़े गिरिवान मह सिर नीवा कर देख। फरीदा जे तू अकल लतीफ, हे फरीद जे तू बरीक मत वाला है। किन्ने कमाल का शब्द वरत्या, अकल लतीफ। लतीफ का भाव हुंदा बरीक बुद्धि वाला। जिस बच्चे नू छेती, जिस बंदे नू कोई गल छेती समझ ना ना आवे, उसनू आपां कहिंदे भाई इहदी मत बहुत मोटी है, इहदी बुद्धि जिहड़ी है ओह बहुत मोटी है। ते जिस बच्चे नू, जिस बंदे नू गल बड़ी छेती समझ आ जावे, उहनू कहिंदे भाई इहदी मत बरीक है। ते बाबा फरीद जी कहिंदे ने, कहिण लगे मनुखा ध्यान रख, जे वाहिगुरु जी ने तैनू बरीक मत दिती है, सोहनी मत दिती है, तां एक कम करिया कर, अपनी जिंदगी चे तू काले लेख ना लिखिया कर। हुण काले लेख दा भाव की है, भी तू विकारां वाले कम, पापां वाले कम ये तू ना करिया कर। भावी में आपां होर सुखा अर्थ कर लईए, भाई तू मंदे कर्म ना करिया कर, गलत कर्म ना करिया कर, जेड़े कर्म नहीं करने चाहिए ओ तू ना करिया कर। पर किमें रुके बंदा, कहन लगे आप नड़े गिरिवान मह सिर नीवा कर देख। कहन लगे अपना सिर नीवा करके अपने गिरबिआं चे झाके देखिया कर। तू दूजिआं दे जीवन नू बड़ा पड़चोलदा रहिंदा है, ओ की करदा है, किथे जांदा है, की खांदा है, ओ की करदा है, ओ किथे जांदा है, तू दूजिआं ते ही नज़र रखी जांदा है, दूजिआं दे जीवन नू बड़ा पड़चोलदा है। पर कहन लगे जीवन सफल तेरा तां होएगा जिस दिन तू अपने गिरेबां च झाक के देखेगा। पर अपने गिरेबां च झाक के बंदा नहीं देखता, सिर्फ दूजिआं नू ही देखी जांदा। ते सतगुरु जी कह रहे ने, कहन लगे गुरसेवा ते आप पछाता, जिन्हां ने गुरु की कृपा नाल अपने आप नू पछाण लिया, अपने अंदर नू जान लिया। अमृत नाम वसिया सुखदाता, उस मनुख

नित नित जीअड़े समालियन देखागा देवन हार तेरे दाना कीमत ना पवै तिस दाते कवन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पाव हो तेल देहो सज्जन असी सड़िया ज्यो होवै साहिब स्यो मेल घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन सदन हारा सिमरिया ना।

आओ सहस तव नैन नन नैन हह तोहे काओ सहस मूरत नना एक तोहे सहस पद बिमल नान एक पाद गंध बिन सहस तव गंध इव चलत मोहे सब मह जोत जोत है सोए तिसद चानण सब मह चानण होए गुरसाखी जोत प्रगट होए जो तिस भावै सो आरती होए हर चरण कवल मकरंद लोभित मनो अन दिनो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सारंग कौ होए जाते तेरा नाए वासा राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु भरिया मिल साधो खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडा हे कर साधो अंजले पुन वड्डा हे कर डंडौत पुन वड्डा हे रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हों मैं कंडा हे ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है जम काल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण पव खंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेसर बहुसोब खंड

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वा

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहे

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

श्री गुरुदेव ए नमः अष्टपदि सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन मह मिटावो सिमरो जासप संबर कै नाम जपत अगंत अनेक वेद पुराण सिमर सुधाखर किन्ने राम नाम एक आखर किनका एक जह जी बसावै ताकि महिमा करि न आवै कांकी एक दरस तुहारो नानक उन संग मोहे उदारो सुखमनि सुखमर प्रभ नाम भगत जना के मन विश्राम रहाओ प्रभु के सिमरन गर्व न बसाय प्रभु के सिमरन दुख जम नसाय प्रभु के सिमरन काल पर हर प्रभु के सिमरन दुष्मन डर प्रभु सिमरत कछु बिघन न लागे प्रभु के सिमरन आन दिन जागे प्रभु के सिमरन भव न व्याप प्रभु के सिमरन दुख न संताप प्रभु के सिमरन साधक संग सर्व धान नानक कर रंग प्रभु के सिमरन रत सिद्ध नव नित प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जाप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसै दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी प्रभु के सिमरन होय सो भला प्रभु के सिमरन सुफल फला से सिमरै जिन आप सिमराए नानक तां कै लागो पाए प्रभु के सिमरन सब ते ऊचा प्रभु के सिमरन उदरै मोचा प्रभु के सिमरन तृष्णा बुझै प्रभु के सिमरन सब किस सुजै प्रभु के सिमरन नाहि जम त्रासा प्रभु के सिमरन पूर्ण आसा प्रभु के सिमरन मन की मल जाय अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दास दसना प्रभु को सिमरै से तनवंते प्रभु को सिमरै से पतवंते प्रभु को सिमरै से जन परवान प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बमोता जय प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दयाला नानक जन की मंगे रुवाला प्रभु को सिमरै से परोपकारी प्रभु को सिमरै तन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बस हर नेरे प्रभु के प्रभु संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरे भाग प्रभु के सिमरन कार्य पूरे प्रभु के सिमरन कबहु न चूरे प्रभु के सिमरन हर गुण बानी प्रभु के सिमरन सहज समानी प्रभु के सिमरन ने चले आसन प्रभु के सिमरन कमल वेगासन प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार सिमरै से जंजन को प्रमया नानक तिंजा सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लाग भेद उपाय हर सिमरन पय सिद जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते हर सिमरन धारी सब तर नाम सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन क्यों सगले कार हर सिमरन में आम निरंकार कर कृपा जुसा बजाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर दुख पंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभु साथ अष्टपदी जय मात पिता सतमीत न पाई मनुहा नाम तेरा संग सहाई जय महा प्यांदु जम दलाय ते केवल नाम संग तेरा चलाय जय मुस्कुल होवे अत भारी हर को नाम खिन माय उदारी अनक पुन चन करत नहीं तरह हर को नाम कोड़ पा पर हर गुरमुख नाम जप मन मेरे नानक पाप हो सुख नेरे सगल सुख को राजा दुखिया हर का नाम जपत हो सुखिया ला करोरी बंधन पर हर का नाम जपत निस्तर अनक माया रंग तिख नाम बुझावे हर का नाम जपत अगावे जेह मार्ग हो जात अकेला ते हर नाम संग होत सोहेला ऐसा नाम सदा त्याइए नानक गुरु परम गत पाइए छूटत नहीं कोट लख बाही नाम जब तय पार पराही अनक बिगन जाय आय संगार हर का नाम तत्काल उदार अनक जोन जन्म मर जाम नाम जबत पावे विश्राम हो मैला मल कबू न तो वह हर का नाम कोट पाप खोवै
ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाइये साधकै संग जय मार के गण जाय न को सार का नाम हां संग तो सा जय पड़े मैं आंद गुबार हर का नाम संग विजया राजा पंत रखो न सिद्धानो हर का नाम तै नाल पछानो जय मां प्यान तप्त भव काम तै हर के नाम के तुम ऊपर छाम जहां तिरख मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भगत

सब है भरपूम दान न्योले कर्म करे बहु आसन जन मारे संयम साधन निमख निमख कर श्री कटावे तो पिहो में मैल न जावे हर के नाम समसर का छन्ना है नानक गुरुमुख नाम जपत का तुपा है मन कामना तेरे दे छुटाए कर गुमाना मन ते उठाए सोच कराय दिन सर रात मन की महल न तंते जात इस देही को बहुत साधना करे मन ते कहु न बिख्या डराय

सदगावे। जेको अपनी सो बालो राय सा संगे हो मैं छोरा, जेको जन्म मरण ते डरा सा जना की सरणी पराय। जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा, नानक ता कै बल बल जासा, सगल पुरख में पुरख पर।

तराय संग सायसु आवेना चीत दो बैराईता सुप्रीत बलुआ के ग्रह पितर बसे रंग केल माया रंग रसाय दृढ़

अपने अमान कछ बारस ले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत अपिक होवे बोरस का विश्वास न होवे जिसके वस जिस आगे रखे प्रभु की आगे मन मत है उसे चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक बाद माया के सर्प हो जाने अनेत बृखी छाया सो रंग लावे उबिन से मन पछतावे

माया, मिथ्या राजो बंतन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ अस्ति अस्वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेखास्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या पशु प्रकृत गुमान, अस्त्र भगत के चरण नानक जप जप जीवै हर के चरण, मिथ्या श्रम पर निंदा सुनया, मिथ्या पर दर्भ को हरिया, मिथ्या नेत्र पे खत पर त्रिया रूपार, मिथ्या रचना पोजन अन स्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावै, मिथ्या मन पर लोभ लुभावै, मिथ्या तन्य पर पुकारा, मिथ्या बास लेत बेकारा।

लाओ। रहत अवर कथे अवर कुमावत मन प्रतिमुखो गण लावत जान आ प्रभु परबीन बाहर पेक न काहु पीन। अवर उपदेश आप न करे अव जावत जन मैं मरे जिसके अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख तर संसार। जो तुम पाने तिन प्रभु दाता नानक कुंजन तन पर आता करो बेनते पार ब्रह्म सब जाने अपना किया अपह माने।

जा सका है तो जय प्रसाद रस सगल सिदर ठाके मन सरणी पर ठाकर प्रभु ताके जय प्रसाद तुझ को न पहुँचे मन सा सिमरो प्रभु ऊचे जय प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताके भगत करे जय प्रसाद पोखन पैरी जय मृत्यु सिमरत क्यों आलस की जाए जय प्रसाद सुबह

तेरी रखाए। जय प्रसाद कर अनुभव दान मन आठ पर कर तिसका ध्यान। जय प्रसाद चुआ चार व्यवहारित प्रभ को सा चेतारी।

सो रात जे प्रसाद सबके गत हो नानक आप जपै जप सोए आप जपाए जपै सो नाओ आप गवाए सो हर गुण गाओ प्रभु कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास प्रभु सो प्रसन्न बसे मन सोए प्रभु दया ते मति उत्तम होए शर्म धान प्रभु तेरी मैं आप कछु न किन्नु ले।

बृहस्पति साधक संगमुख उज्जल हो सा संगमल सगलिख हो साक संगमिट अभिमान साक संग प्रकट सो ज्ञान साधक संग भो जय प्रवनेरा सा संग सब हो तनवेरा साक संग पाए नाम रतन साक संग एक उपर जतन साध के महमा वर्ण कौन पुरानी नानक साख्य शोभा ब्रह्मा सुमान साग संग गोचर मिलय साग संग सदा पर फुलाय साध का संग अभय बस पंचा सा संग मृत रस पंचा सा संग सबके रैन साग संग मनोहर बैन साग संग न कतु ताव सा संग सच मन पाव साग संग माया ते पिन सा संग नानक प्रभ सो प्रसन्न सा संग दुश्मन सा मीत साधु के संग महापनी सा संग के स्यो नहीं बैर साग संग न बिगा पैर साग संग ना ही को मंदा सा संग जाने परमानंदा साग संग ना ही ओताप साग संग तजे सब आप आप जाने सा बढ़ाई नाने सा प्रभु बने आई साग संग न कबू तावे साग संग सदा सुख पावे सा संग बस गो चिर लय साधु के संग अजर सह साग संग बस छान ऊचे साधु के संग महर पहुचय साग संग दृढ़ सब धर्म साग संग केवल पार ब्रह्म साग संग पाए नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साग संग सब कुल धारे सा संग साधन में कुटम निस्तारे साधु के संग सोतन पावे जिसन ते सबको वरसावे सा संग धर्म राय कर सेवा साधक संग शोभा सुर देवा साधु के संग पाप लायन सा संग मृत गुण गायन साधक संग सर्वथान गम नानक साधक संग सफल जनम साधक संग नहीं कच काल दर्शन पेट तो होत निहाल साधक संग कलोकत हर साग संग नरक पर हर साग संग इहा उहा सुहेला सा संग बिचर थर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साग संग न बिरथ दावे पार ब्रह्म साधर बसे नानक उदर साध सुन रसय साध के संग सुनो अर नाओ सा संगर के गुण गाओ साग संग न मंते बिसरे सा संग सर पर निस्तर साग संग लगे पर मीठा साधु के संकट कर डिठा सा संग पै आज्ञाकारी सा संग पै हमारी साग संग मिटे सब रोग नान सा पिटे संजोग सार के मेहमान वेद न जाने जेता

मन साचा मुख साचा सोए अवन अपेक्षा एक जीवन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा नर ले जैसे जर में कमलिया ले ब्रह्म ज्ञानी सदा नर दो जैसे सुर सर्व को सोख ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट सुमान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तेर देख जो वसुदा को खोद को चंदन ले ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ नानी दियो पाव का सह सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन होए प्रकाश जैसे तरु पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी का मित्र शत्रु समान ब्रह्म ज्ञानी का नाही अभिमान

ब्रह्मज्ञानी कह नाही तंता ब्रह्मज्ञानी लतावत बंदा। ब्रह्मज्ञानी कह हुए सुफला ब्रह्मज्ञानी सुफल फला ब्रह्मज्ञानी संग सगल धारणा ने ब्रह्मज्ञानी जपै।

हमारे। ब्रह्म ज्ञानी सदा सजागत ब्रह्म ज्ञानी हो बनते आगत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुसै निवास नानी ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिना ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का पिता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का हुए चिन्ह ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मन ब्रह्म ज्ञानी जिस कर प्रवया ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बुड़ पागी पाइये ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइये ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानी ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माये ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने पे ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश। ब्रह्म ज्ञानी का कथ्या न जाया दाकर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी के गल ब्रह्म ज्ञानी जाने। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नाने ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सबसे का करता ब्रह्म

सकल निस्तारय स्पदि मिथ्यानाय रसना परसमन में प्रे निरंजन दर्श परतरे अरूपन पे कह नेत्र साकेत अलसन संग हेत कर्ण सुन काउ के नंदा सप्त जान आपस को मंदा गुर प्रताप क्या पर हर मन की बासना मंत टराय इंद्रे जेत पंच दोग ते रहत नान कोट मदे को ऐसा परस बैसुन सो जिस्य उपर सो प्रस्थान बिसन की माया ते होय पैन कर्म कर तो है न कर्म तस बैसनों का निर्मल धर्म काहु फल की इच्छा नहीं बासे केवल भगत के संग राचाय

सुखम जाने असतुल तो वर्णा को दे उपदेश नानक उस पंडर को सदा देश। बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चो वर्णा में जप को नाम जो जो जपे तस्की गत हो सा संग पावे जन को

अपने दाको आप कृपा करे ते दाको सब सो जी पर सकल संगात मो दास ऐसे जुगत नानक राम दास प्रभु की आगे आत्म हिता वै जीव मुख सौ कहा तैसा रख तैसा सोग सदानंद नहीं भियोग तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटे तैसा

बृहस्पतिं कैकोट पुजारी कैकोट चार बिहारी कैकोट पे तीर्थवासी कैकोट बन पर मैदासी कैकोट वेद के श्रोते कैकोट तपित्र होते कैकोट आत्म ध्यान तार कैकोट कव का विचार कैकोट नव तनाम त्याम नान करते कांत न पावे कैकोट पय अभिमानी कैकोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट आभे गातम ने कोर कई कोट पर द्रव को कई कोट पर दुख न कराए कई कोट माया शरमाए कई कोट पर दे प्रमाए जित जित लाभ तित तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सत जति जोगी कई कोट राधे रस भोगी कई कोट पंखे सर्प पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट शशिर सूर्य नक्षत्र कई कोट देव दानव इंद्र सर छतर सग

जिसके अंतर राज अभिमान सो नरपात्यो वसुवान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विस्ता का जंत आपस

अनेक भोग व्याख्या के कराय नेत्रवताप खप खप मराय बिना संतोष नहीं को राजय सुपन मनोरथ व्यर्थ सब का जाय नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी के से प्राप्त होए कर्ण करावने आपे आप सदा सदा नानक कर जाप।

तराय संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन का जोन लवाय संतन के दुखन सर्व जोन पाए संतन के संत के दुखन त्रे जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को चलाए संत के दुखन ते सब जाए संत के दुखन नीच न जाए संत दुखी का था को नाहे नानी सुन पावे ताओ विगत पाए संत का निंदक मात ताई संत का निंदक खंड न पाए संत का निंदक मात यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज हीन संत का निंदक दुखियार दीन संत का निंदक सर्व रोग संत का निंदक सदा बिजोग संत का

सदा भिकारी संत का दुखी जन्म मरा संत के दुख न चुकते तरह संत के दुखी को ना ही ठाव नाने सुन पावे ताले मिलाए संत का दुखी अद बीते टूटा है संत का दुखी कित काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाइये संत का दुखी जुड़ पाइये संत का दुखी अंतर ते थोता ज्यो साध बिना मृतक की लोथा संत का दुखी के जड़ के जनाही आपन बीजा पे ही खाए संत का दुखी को अपना रखना हार नाने सुन पावे ताले उबार संत का दुखियों बिल लाए ज्यो जाल बेहून मछली तड़पड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यो पाव के दन नहीं त्रापाए संत का दुखी छुटे अकेला ज्यो बुआड़ तिल के तुम्हें दोहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सा मिथ्या कहत किरत निंदका तुरी पया नाने ज्योत पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ो पोए जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइये संत का दुखी न मरे न जीवाइये संत के दुखी की बुझे न आशा संत का दुखी उठ चले

संसार मन तर्म को बोले हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पहचान तुद कियो सो जी जान नाम संग जिस का मन मान्या नानक त्रय निरंजन जान्या गुरु प्रसाद अपना सुज जाए तिसके जानो तृष्णा बुझ जाए

प्रमंच त्यावे सो संत सुहेला नहीं डुलावे। जिस प्रभु अपना कृपा करे तिस सो सेवको किसते डरे। जैसा सात सदिष्टाया अपने कार्य में आप समाया। सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरु प्रसाद सब बुझिया। जब देखो तब सब कुछ मूल नानक सो सुखम सोई असथूल। न किसी जन्मे न किसी मरे आपन चलता पी करे। आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञाकारी तारी सब श्रेष्ठ।

सेवा सोई लागे, जिसनु कृपा करे बड़ भागै। नाम जपत पावै विश्राम, नानक तिन पुरखो उत्तम कर मान। जो किछ करै सो प्रभु कै रंग, सदा सदा बसै हर संग। सह सुभाय हो वै सो होए, करणे हार पछाणै सोए। प्रभु का किया दन मीठ लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिससे

मन मूर्ख काहे बिरलाइए, पूर्व लिखे का लिखिया पाइये, दुख सुप्रभु देवन हार, अवर त्याग तू तिसाए चितार, जो कछ कर

कीर्तन गाइए। अनक बिगंत साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चाखे ओट गही संत दरियाया सर्व सो नान ते पाया मृत।

सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पावन नाम के संग उदरे सुन सरवन कर कृपा जैसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सदा की वाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत कर्म जाके रचना सत मूल सत सत्युत पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बधाए तिसे सब भली सत नाम प्रभु का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत वचन साधु उपदेश सत जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझै दे कोए नाम जब ताके गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करने हारु अवन भूत करत विचार करते की मित न जाने किया नानक ज्योत पावे सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पै बिस्माद जिन बुझया तिसाया स्वाद प्रभु के रंग रात जन रह गुर के वचन पदार्थ लै ओए दाते दुकाट नहार जन के संग तरा संसार जन का सेव सोवड़ भागी जन के संग एक लिव लागी।

का रंग सेवक प्रपालन हारा सेवकीरा केन्द्रंकारा सो सेवक जिद्या प्रवतार नाने सो सेवक सासमार अपने जन का पर्दा ढाक अपने सेवक के सर पर राख अपने दाखो देव डाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आपत राख ताकि गतमत को न लाख प्रभु के सेवक को न पहुँचे प्रभु के सेवक ऊँचते ऊँचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नाने सो सेवक दर्द प्रगटाया निके गिरी में कल राख पसम कर लश्कर कोट लाख जिसका शासन काटते आप ताको राख दे कर हाथ मान जजन करत वो पात तिसके करत बिरथ जात मारे न राख न कोय सर्व जिया का राख सोय काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख विंडाणी बारिंग बार बार प्रभ जपिए पी अमृत एह मन तंत्र पिया नाम रतन जन गुरु पाया तिसके चरणाइंद चाया नाम तन नाम रूप रंग नाम सकर नाम का संग

न जानो आठ पैर प्रभ सहजू रे कौ नान से जन पूरे मन मेरे तिनकी ओट ले मंथन अपना तिन जन दे जिन जन अपना प्रभु बचाता सो जन सर्व थोका दाता तिजके सरण सर्व सुख पावे तिजके दर सब भाव मिटावे अवर सियान सगले छाड तिजन की तू सेवा लागो आवन जान हो तेरा नानक तिजन के पूजो साध पैरा स्लोक

मतले भीष विश्व गुरु कामन बाने सो से परमेश्वर की गत जाने सो सदगुरु तुसृदय हरनाओ अन कुबार गुर को बल जाऊ श्रमधान जी का दाता अठ पैर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म में जन जन में पार ब्रह्म कैप नहीं कज परम सह सियान पलिया न जाइए नानक ऐसा गुरु बड़ भागी पाइये सबल दर्शन पे खत पोनीत पर सत चरण निर्मल रीत पेट संग राम गुण रव पार ब्रह्म की दरगा गव सुनकर वचन करने आगान मन संतोका तम पतिया ने पूरा गुरुआ खोजा का मंत्र अमृत दृष्ट पे खे होए संत

संत जनाम करो विचार एक सिमर नाम याद आर अवरपा समेत बसारो चरण कमर दमायुर तारो करण कारण सो पर समरथ दुर्कर गौ नाम अरवथ एव तन संचो हो भगवान संजना का निर्मल मंत एक आसरा को मन माय सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कंट्रोल तावे सो तन हर सेवा ते पाव है जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परी जिस बा को करा भली करनी सासो बापज हर की सरणी

सुख होए। सेवक के मनसा पूरी पई सगुर ते निर्मल मत ले। जनको प्रभु होयो दयाल सेवकिन सदा निहाल। बंधन काट मुक्त जन पया जन मरण दुख प्राम गया। पुण्य श्रद्धा सा पूरी राव रया सा संग हजूरी। जिसका स्वातन लिया मिलाए नाने भक्ति नाम समाये। सुख मिश्र दे काल न पाने सुख मिश्र दे किया जाने। सो क्यों बिसरा दिन सब के दिया सो क्यों बिसरा दे जीवन जिया। सो क्यों बिसरा दे अग्र में राख गुरु प्रसाद को बिरला लाखाए। सो क्यों बिसरा दे भक्ते काटे जन्म जन्म का टूटा गांडे। गुरपुर तत एह बुझाया प्रभु अपना नान जन त्याया। साजन संत करो यो काम आन त्याग जपो हर नाम। सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अपरा नाम जपावो।

वैसंग एक बार दिदे कर्मया गुरुप्रसाद नाम जपलया ताकि उपमा कही न जाए नानक रया सर्व समाय प्रभु संदीन दयाल भगत वत्सल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्वघटा करत प्रत पाल आदि प्रकारण करता भगत न के प्राण दयाल जो जो जप

तम नरगुण प्रभसाई सुभाय तब शिव सगत कहो कत थाय धवाप आप अपने जो तर तब कवन डर कवन कात डराए आपन चलताव करने हार नानक ठाकुर कामया पार अपना से सुख आपने आसन था जन मन को हो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब भिक्त गोत्र प्रभ एका तब चित्रगुप्त

कौन या अभिमान। जय स्वरूप केवल जगदी तय चल चर लगत को किस। जय ज्योत स्वरूप जो संग समाव तय किस कवन त्रिवताप। कर्ण करामन करने हार नान करते कर्ण सुमारे। जब अपने सो बापन संग बनाई तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई।

ऊंचा अपने आप निरत कौन ठाकर कुन कही है चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्मात नानक अपनी कद जानू आप जया चल छेद पे सुमाया वहां किसे ब्याप तुमाया आपस को आप है आदेश तक उनका नाई प्रवेश जय कह के भगवंता तक कौन है चिन्ह किसला के चिंता जय अपने आप आप त्यारत कौन कद कौन सुनने हारा भो व्यंतु चे ऊंचा नानक आपस को आप पहुंचा जया प्रच प्रपंच आकार तगुण में किन्नो विस्तार पाप अंत पही कावत को नर को सुरुग वंशावत आल

जबर का को दाए सब सर निरा एक निरंजन राय जी के दुर्जा के सब हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण दान बेअंत अपार नानक दास दा बलिहार पूर्ण पूर राय दयाल सब उपर हो कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतरदा में रहो बे आप प्रतपाला जीवन बहुपात जो जो रचियो सोत सह त्यात जिपा

que gungao prantan ka ehai suau आठ पैर प्रभेखो नेरा मिटिया ज्ञान बिन से अंधेरा सुनब दे सिर दे बसाओ मन छे नानक पल पावो हालत पर दोले स्वार राम नाम अंतर तार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिसन बसत साज परीख्या मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर मंत्र पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगाह ने वह के तुम्हारी एक

ताके कार्य पूरा मात पूरी अम्र जाके दृष्ट दर्शन पेखत उदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप तन सेवा से परवान अंतर जामे प्रभु प्रधान जसवन बस सोहत निहाल ताके निकट न आबद काल अमर पे अमरा पद पाया सासई नानी करत आया।

सु अस्पदी शांत संग अंतर प्रवडिठ ना प्रभु का लागा मिठ सगल सामग्री एक कटुम्बा है अनक रंग नाना दुष्टा है नौनद अमृत प्रभु का नाम देही में इसका विश्राम सुन सुमात अनह तैनाद कह न जाय अचर्द विस्मात तिन देखिया जिसाब दिखाए नाने तिजन सो जी पाए सो अंतर सो बार अनंत कड़कड़ व्याप रहा भगवंत तरण माए आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रत्यय पाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा करम पौन पानी बैसंतर माए चार कुंड जिसे समाहे तिस्ते पन नय कोठाऊ गुर पसा नानक सुख पाऊ वेद प्राण सिमरत में देख ससियर सुर नखत्र में एक बाणी प्रभु के सबको बोले आप डोल न कबू डोले सर्व कला कर खेला खेल मोल न पाय गुण अमोल सर्व ज्योत में जाके ज्योत तार रायो स्वामी ओत पोत गुरपसा परम का नास नाने तिन में विश्वास संत जनक पे कंसा ब्राह्मण संत जनक हृदय सब धर्म संत जना सुनो सब बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जात तिसके रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सो सुकुमार ने कर्ण कराम हार प्रभ जाने अंतर बस बार पी हो नान दर्शन देख सम्मोही आप

चंदर आसन त्याग तरंग संत जना के तुर मन मंग आप छोड़ बेनती करो सा संग अगन सागर तरह हरतन के पल हो पंडार नानक गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहद्यानंद सा संग पद परमानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित बहु नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पुंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का ए आधार उत्तम श्लोक साध के वचन अमलिक लाल रतन सुनत कमावत सोच उदार आप तराय लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मल्ला गाल रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद कराय प्रभु का जय

सेव की से आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभे के पमारी प्रभु के उत्त करहो संत मीत सावधानी का ग्रथित सुखमनि सहाय गोविंद गुण नाम जिसमन बसे सोहोत निदान सर्व इच्छा ताके पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान भौर न हो बया मन जान हर तन खाट जल जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तय सिद्ध विद्या तप जोग प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रकाश साब कै मत सकल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम बचन मन सुने यो निदान जपै मन कोए सब जग में थांके गत होए गुण गोविंद नाम तुनवाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम संकोट अपराध साध संग मिटाए संत कृपा ते जम ते छुटाए जाके मस्तक कर्म प्रभाए साध शरण नानक ते आए जिस

इहो अंत न जाने कोई। बहुता कही है बहुता हुए वड्डा साहिब ऊंचा था ऊंचे उपर ऊंचा ना एवड ऊंचा होवे कोई ते ऊंचे को जाने सोए जे वड़े आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोद अपार केत्या गणत नहीं विचार।

अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। एका माई जुगत व्याई तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। जीव ते सुभाव ते वै चलावे जीव होवे फरमान। ओहो वेखै उना नदर ना आवै बहुता इहो विडान। आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस। आसन लोए लोए भंडार जो किश पाया सो एकावार। कर कर वेखै

तिथे भगत वसह के लो करे आनंद सच्चा मन सोए सचखंड वसै निरंकार कर कर वेख नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जे को कथे तायंत नायंत तिथे लो लो आकार जिव जिव हुकम तिबह तिबकार वेख विगसै कर विचार नानक कथना करड़ा सार जत बहारा धीरज सुनियार आहरण मतवेद हथियार पाओ खलागन तब ताओ भांडा पाओ अमृत तित टाल घड़िए शब्द सच्ची टकसाल जिनको नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहाल सलोक पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोए दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे धर्म हदूर

लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मह काहू पशाह को सीसनवायो कौबतान को पूजत है बस कुमर तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो कौबतान को पूजत है बस कुमर तान को पूजन तायो कूर क्रिया उर्जियो सब ही जग श्री भगवान को भेद ना पायो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रचा पूरन होए चित की इच्छा ताब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो ब्रत पारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काब हो आप हाथ दै मोहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै कर तारा मोर अच्छा निज कर दे करिए सब बैर नकाओ आज संघरिए पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें शाड कोई अबर ना त्याऊ जो बर चाहू सो तुम ते पाऊ सेवक सेख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरिए मरण काल का त्रास निवरिए हू जो सदा हमारे पछा श्री अस तुझ जू करिय हो रचा राख लेहो मोहे राखन हारे साहिब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो बरी चतर दस कंता काल पाए ब्रह्मा अवतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विसन प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा जमन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो जमन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जशन उपजायो आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जने आप सवारी शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो घट घट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछाणत चीटी ते कुंचर असथूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाने घट घट के पट पट की जाने जब उद करख करा कर तारा प्रजा धरत तब देह आ पारा जब आ करख कर तोह कब हूं तुम मैं मिलत देह धर सब हूं जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आपे अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत भेदा जाको भेव न पावत बेदा ता को कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा सिम निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जेती बार नत भिन भिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केहे विद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राव कही भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत भुज खान बाहुर राच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो संकर अकैठा सिगरी श्रेष्ठ दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख अवार असिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो।

दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूरन शुभ राता, किल विक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन काओ शय करता, श्री अस तुज जब भय दयाला, पूरन करा ग्रंथ तत्काला, मन वांछित फल पावे सोई दुख न तिसै व्याप्त कोई अड़ेल, सुने गुंग जो जाय सो रसना पावई, सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई, दुख दर्द भौ निकट ना तिन नरके रह, हो जो जा की एक बार चौपई, को कहे चौपई, संबत सत्रह सहस पनिजय, अरद सहस फुन दीन कहिजय, भाद्रव सुदी अष्टमी रब वारा, तीर सतुद्रव ग्रंथ सुधारा, सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते, को आंख तरे नहीं आन्यो, राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कह मत एक न मान्यो, सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद, कह हम एक न जान्यो, श्री असपान कृपा तुमरी कर, मैं ना कहियो सब तो ही बखान्यो, दोहरा

सुन मीता जियो पिंड सब तन अर्पी जै इयो दर्शन हर जियो पाई है भयो अनुग्रहो प्रसाद संतन कै

सतगुरु किन न पाया, सतगुरु चाव रखन का प्रगटा सुनाया, सतगुरु मिला सदा मुक्ति जिन विचो मुँह चुकाया, उत्तम यह विचार के सच्चे सोच तलाया, जग जीवन दाता पाया।

किया। चार वेद होए सचार, पढ़े गुण तिन चार विचार, पाओ भगत कर नीच सदाए, तो नानक मुख अंतर पाए पौड़।

परम सम्मान योग चुक चुक अटल चवर शतर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन गोद विच साजी निवाजी गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ अते मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ आप सारे बड़भागी हो धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो अपना ये मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ अज जो अमृत वेले सतगुरां ने पावन हुक्मनामा बख्शिया उस दी विचार आपा कर सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज जो सतगुरां ने पावन फुरमान बख्शिया

रे गावे ईश्वर बर्मा देवी सोहन सदा सवारे गावे इंद इदासन बैठे देवत्या दर नाले गावे है सिद्ध समाधि अंदर गावन साध बेचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न रखी सारे जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रतने उपाय तेरे आठ साठ

दुख सब विसारणा अंगीकार हो कर तेरा कार्य सब सवारणा सबना गल्ला समरथ स्वामी सो के मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।

जगत दिखाया, गुर प्रसादी बुझिया ता चलत होवा चलत नदरी आया। कहे नानक सृष्ट का मूल रचिया, जोत राखी ता तू जग मह आया।

हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सेवगुन सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो। काट काट के अंतर की जानत, परे बुरे की पीर पशानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पशानै, घट घट के पट पट की जानै। जा बुध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा, जब या करख करत हो कब हो, तो मैं मिलत दे तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै, आप अपनी बूझ उचारै, तुम सब ही ते रहत नरालम, जानत बेद भी दर आलम।

आपे अपनी बुद है जेती बरनत भिन भिन तोहे तेती तुमरा लखा न जाए पसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप सरूपा रंक प्यो राव कही पूपा अंड जिर सित जकीनी उत पुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा वह बैठा कहूं सिमट भयो शंकर एकैठा सिगरे श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आदि जुगाल स्वरूप सुयंभव अबर अच्छा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दोष जिते उठव तुत पाता सकल मलिश करो रणकाता जे अस्तुज तब सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तह वह मरे पुरख जवन पग परी ते हारे तिनके तुम संकट सब टारे जो कल को एक बार ते आय है ताके काल निकट नहीं आय है रच्छा हुए ताहि सब काला दुष्टर इष्टर तत्काला कृपा दृष्ट तन जाय ने हरि हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट शाश वह सके न कोई एक बार जिन तुम संभारा काल फांस ते ताहि उबारा जिन नर नाम ते हारो कहा दार्द दुष्ट दुख ते रहा खड़के तो मैं शरण ते हारी आप हाथ दे लियो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लियो बचाई कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता केल बिक सकल देह को हरता दुष्ट दुखियों को छह करता श्री अस्तुज पै दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन पाचत फल पावे सोई दुखनत से व्यापत कोई अड़िल सुने गुंग जो याहि सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाय चतुरता आवई दुख दर्द भौ निकट न ते नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबद सत्रह सहज पणिजय अर्थ सहज फुंतीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवारा तीर्थ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गए जब ते तुमरे तब ते को मक तेरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान ने कहे मत एक न मान्यो सिमरत शास्त्र वेद सबे बोपीद कहे हम एक न जानियो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहे सब तुय बखान्य दोहरा

परम सम्मान योग, जुगो जुग अटल चवर शतर तखत दे मालक, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभायमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, मीडिया राही गुरु चरणा नाल जुड़ बैठी साध संगत जीओ, आप जी सारे वड़भागी हो, धनता दे योग हो जो सतगुरां दी पावन बाणी अमृतमई बाणी सरवण करके आत्मक आनंद माण रहे हो, अपना यह मनुखा जन्म सफला कर रहे हो। आओ गुरमत विचारां दी आपां सांझ पा सकीए। विचार आरंभ करन तो पहला सतगुरां दी बख्शी हुई फतेह प्रवान करो जी, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आ मन का एह सुआउ जन के संचित आवे नाउ आप मुक्त मुक्त करे संसार नानक तिस जन को सदा नमस्कार सो कहो टल गुर से भी अहनस सहज सुभाई दर्शन परसे आए गुरु कै जन्म मरण दुख जाई हुआ सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी है सज्जन सच्चा पातशाह सिरसां दी साहु जिस पास बैठिया सोही है सबना दा भी साहु।